0: कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हूँ।
0: बढ़िया भाई, आप आए, बाहर आ गया और काफी नॉलेज लेकर आए हैं। वैसे तो हम हमेशा मिलते हैं कभी दोस्त की तरह, कभी यू नो स्टेज बडीज की तरह, पर आज यहाँ पर आप एक स्पेशल मिशन में आए हो, और वो स्पेशल मिशन क्या है?
1: सो आज स्पेशल मिशन है हमारा, हमारे लोगों तक ये बात पहुंचानी कि वी आर आई द इंडियन सोशल एंड कल्चरल क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग एन अंताक्षरी फॉर द कम्युनिटी। सो हम लोग एक अंताक्षरी खेलने वाले हैं आप सब लोगों के साथ। आप सब लोग को निमंत्रण है, आइए ज्वाइन करिए एट द एल्डर्स गेट सेंटर ऑन 23rd of May शाम 5 बजे से। सो हम वहाँ सब खेलेंगे। There'll be fun, there'll be games, there'll be prizes, and you guys are most welcome to join.
0: जी हाँ, ये अंताक्षरी का एक एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है, और ये खास तौर पर से वैसे तो इस सभी के लिए है, पर आई थिंक जो हमारे साथ IT

0: 90s के जो संगीत प्रेमी है दे वुड लव इट, दे वुड लव इट टू एक्सटेंड. सो प्लीज डू टेल अस ए मोर अबाउट दैट. पर इसमें आई मीन लाइक songs, singing. हमारे लोगों को गाना इतना पसंद है. It's so easy for them to sing. Anyway, खाना बनाते में गाना गाना, गाड़ी चलाते में गाना गाना, नहाते में गाना गाना, संडास में भी गाना गाना,
1: इसके लिए भी गाना है.
0: हर जगह पे गाना है. तो यही करना है आपको और गाना है. और समझिए जब यहाँ पर लोग आएंगे, what can they expect? क्या क्या देख सकते हैं उस दिन?
1: So, उस दिन एक तो ये कि एक तो माहौल इतना बढ़िया होगा, शाम होगी, सारे संगीत में होंगे, पुराने गाने होंगे, साथ साथ थोड़े बहुत गेम्स होंगे, तो पूरी एक कम्युनिटी साथ में आएगी एंड वी विल बी एबल टू हैव सम फन एंड लाइट नाइट. पर उसके साथ साथ एक जब शाम थोड़े आगे की तरफ जाएगी तो हम लोग एक छोटा सा इवेंट ओपन डेक रखेंगे जहाँ पे पीपल कैन कम एंड डांस एज वेल टुगेदर. देयर विल बी फूड, they'll be more getting together. So एक अच्छा जरिया है लोगों के बीच में प्यार बढ़ाने का, साथ आने का और सब में खुशियां मिल बांट के साथ बिताने का.
0: Well, actually, जब समत ये बोल रहे हैं, DJ JB, we are also part of ICC, ठीक है? और आज मुझे ना, you know, ICC की तरफ से मुझे बहुत खुशी हो रहा है, तो मुझे कुछ फ्री देने का मन कर रहा है.
2: फ्री देने का मन
0: क्या? JB, आप आके, आप भी, आप तो यू रीड माई माइंड, आप हमें बताइए कि आज हम लोगों को क्या फ्री दे सकते हैं.
2: सो ये अंताक्षरी जो ICC लेकर आ रही है, दिस इज गोल्डन एरा अंताक्षरी, जिसका मतलब है कि आपको तैयार होके आना है हमारे पुराने हीरो हीरोइंस की तरह, शायद ब्लैक एंड व्हाइट में ही आ जाइए और डिफरेंट टीम्स हमारे साथ, अब सब तोड़फोड़ी हो
0: रही है, थोड़ो भाई, थोड़ो,
2: डिफरेंट टीम्स हमारे साथ जुड़ गए. एक्चुअली चार टीम ऑलरेडी बन गए हैं, चार टीम एंड ईच टीम कंसिस्ट ऑफ थ्री पीपल. सो चार टीम ऑलरेडी बन गए, विच मीन्स के 12 लोग हमारे साथ
1: ऑलरेडी जुड़ गए, इवन अभी और जुड़ रहे हैं साथ में,
2: ऑलरेडी जुड़ रहे हैं. अब हमारे पास एक ऑफर है रेडियो केजे लोकल के लिसनर्स के लिए. ये अगर एनरोल होना है, ऑब्वियसली यू पे अ लिटिल बिट ऑफ फीस, पर आज अगर आप जुड़ रहे हैं विद थ्री पीपल, जैसे आप और आपके दो दोस्त साथ में जुड़ रहे हैं, इट्स फ्री. यू कैन एंटर इनटू दिस अंताक्षरी कंपटीशन थ्रू रेडियो केजे लोकल.
0: वाओ, देयर वी गो भाई, फ्री चीज है, किसको? जी फ्री. आपको पता है ICC जब भी कुछ लगता है, वैसे भाई क्विकली मैसेजेस पढ़ दो. सूर्या जी कह रहे हैं समथ हैज गॉट अ गुड वॉइस और वो अच्छा गीत भी गाते हैं, विल हियर वेरी सून फ्रॉम हिम.
2: वैसे एक पर्सनल मैसेज आया था आपके फोन में ये पूछकर, आप बाद में चेक कर लेना इफ समथ जी इज सिंगल.
0: अच्छा, ओके, चलो हम अभी अभी अभी पूछ लेंगे. और किसने किया मुझे पता है किसने किया होगा. चलो उमा जी और आदित्य जी आप भी हैं, जीबी जी आज तोड़फोड़ कर रहे हैं, तोड़फोड़ के मन से आए हैं. और पीयूष रस्तोगी जी बोल रहे हैं जीबी इज द विनर. भाई ये तो हमारी दिल जीत चुकी है, जो काम सालों तक क्राइसिस में किसी ने नहीं किया इन्होंने किया है, तो फिर एक अंताक्षरी क्या है. और ओके जीबी जी, ICC, ठीक है, दिवाली पिछले कितने सालों से बिता हुआ, करेजियस, वेरी गुड लुकिंग, शाहरुख खान की वॉइस वाले प्रेसिडेंट मिस्टर मोंटी पार्टी
2: जी,
0: और उनकी बीबी जो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि हम सबको फटती है, जो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है उनकी बीबी की हम सबको फटती है, उनके साथ एक प्यारी स्माइल वाली सूर्या, ठीक है, और फिर हम दोनों, आप तो है,
2: फिर
0: हम भी काफी गुड लुकिंग है,
2: ठीक है, ठीक है, ओके
0: ओके. चलो फिर अभी हमारे नए मेंबर समझ जी भी आ गए, सुधीर जी भी आ गए. बस जी भी, हमने ये दो तो फ्री दिया है, ठीक है, हम सोच रहे हैं कुछ और भी फ्री कर देते.
2: आप क्या फ्री कर रहे हो अब?
0: यार नए बंदे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, पेरेंट्स घर पे बैठ के क्या करेंगे, वो भी टीम लाएंगे,
2: डेफिनेटली
0: पैसे उनसे, अंकल अंटियों से हम कैसे पैसे ले सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक?
2: वेरी गुड आइडिया क्रिश जी. सो ICC जो लेकर आ रही है गोल्डन एरा अंताक्षरी, अंकल आंटी आप घर पर मत बैठो. अभी हाईसॉ के हिरल की मम्मी भी हमारे साथ जुड़ी है, तो मम्मी पापा आप लोग घर पे मत बैठो, चलो अंताक्षरी देखने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली जब वहां पर अंताक्षरी हो रहा है, वी वुड लव यू गाइस टू कम एंड जॉइन अस एंड विटनेस दिस अमेजिंग इवेंट एज वेल.
0: जी हाँ, और इसमें समझ जी, इट्स नॉट कि आई एम गोना कम देयर और मुझे जीतना ही जीतना है. आप वो टैग लेकर जा सकते हो कि 2026 में मई 23 उस डेट को हम ICC के साथ हमने एक अंताक्षरी में पार्ट लिया.
1: बिल्कुल,
0: you know, ये टेक तो आप लेकर रहिए, ले जा सकते हो.
1: Absolutely.
0: जी हाँ, बिल्कुल. और वैसे समझ जी, यू विल बी डूइंग अ डीजे दैट डे टू, और इट विल बी, इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग. और जीबी जी आप भी वहां पर होंगे, बाकी ICC मेंबर्स टीम भी होंगे. आई थिंक जहां तक मुझे पता है, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, अगर किसी को पता होगा, घर पे बैठने की बात हम नहीं करें, पर क्राइस्टचर्च में ऑफिशियल अंताक्षरी पहली बार हो रहा है, विच इज

0: विद्या।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप कृषि बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है। और जैसा जीपी जी ने बताया कि वी शुड एनकरेज पेरेंट्स, डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स जो आ रहे हैं घर पर हैं, आए इंजॉय करें, देखें हमारी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है, कितना बॉन्ड है और कितना प्यार है हम सबके बीच में।
0: समझ, वैसे जस्ट जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, यू दिस इज आपका पहला साल है एज अ मेंबर, व्हाट मेड यू ज्वाइन आईएससीसी?
1: So I saw ISCC as a not just as a platform, but also as an opportunity to actually give back to the community. I am a firm believer of doing things for the society. So ये I think एक जरिया है जिसके through मैं community building में help कर सकता हूँ। एक cause आप कह सकते हैं कि सबको साथ लेके चलना मुझे बहुत पसंद है, तो वो एक जरिया हो जाता है कि हाँ हम सबको साथ लेके चल सकते हैं और खुशियाँ बांट सकते हैं।
2: खाने का कोई प्रबंध है वहां पे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे खाने का भी प्रबंध है, आप आइए वहाँ पे खाना आपको मिलेगा, वहाँ पे जलपान की पूरी व्यवस्था है।
2: जलपान जो खाना है वहां पर, हमारे अपने MBA फ्यूजन मंदार जी है वो कर रहे हैं, तो उनका अगर खाना भी आपको एंजॉय करना है फ्रॉम MBA फ्यूजन, आ जाइए। ये हो रहा है एल्डर्स गेट से 23rd of May,
1: 23rd में।
2: एंड टाइमिंग क्या है समर जी?
1: टाइमिंग है शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे तक।
0: ओके समर जी, आपसे एक और सवाल है। आज जैसे आई बीन पार्ट ऑफ ICC फॉर अ वाइल, जीबी हैज, पर आप आए हो, यू हैव वॉच्ड ICC फॉर अ वाइल, व्हाट डू यू थिंक द विजन इज जनरली एवरी? अभी रिसेंटली ICC ने दे डिड एनजेक डे, दे आर डूइंग दिस सेकंड इनिंग्स वो कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक उनका विजन है?
1: सो द विजन बेसिकली इज अगेन बिल्डिंग द कम्युनिटी टुगेदर, of course not just a specific community but strengthening the whole community together. I think any society comes builds stronger base with when the people come together, and that's what we need at this point of time. We have been going through such struggles throughout these different difficult phases when there's so much uncertainty in the current circumstances, and I think jab hum sab saath honge, sab ek dusre ka support karenge, एक अच्छा माहौल बनता है, एक अच्छी सोसाइटी बनती है, एक अच्छा वातावरण बनता है जहाँ पे सिर्फ हम नहीं, हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी एक खुशी से रह सके और वो एनवायरनमेंट उन्हें मिले कि वो फील करे कि हाँ हम यहाँ पे बिलोंग करें।
0: डेफिनेटली, जैसे
2: आई लव दैट वर्ड वातावरण।
0: चलो आप हमारे
1: आज
0: साथ,
1: मेरी हिंदी की टीचर बहुत खुश होगी।
0: चलो आप हमारे साथ हैं, वी हैव स्टिल गॉट 4-5 मिनट्स, एंड हम क्या करते हैं कि रेडियो कहजे पे हम हमारे जो लिसनर्स, इनको हम डिसअपॉइंट करना पसंद नहीं करते, तो हाँ रिक्वेस्ट आया है कि यू नो हमने और जीबी ने तो अपना जो थोड़ा सा टैलेंट था दिखा दिया,
2: हमने तो बहुत है।
0: अभी आपकी पारी है, कोई भी गीत 2-3 लाइन भेजा कि लोगों को ये फील हो कि यार जब एक रेडियो पे, रेडियो जो कि बात कर सकता है, यू नो क्राइस्टचर्च या न्यूजीलैंड के बेस्ट फीमेल MC कर सकती है, तो एक डीजे गा सकता है, जब ये सब लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? फ्यू लाइंस फ्रॉम यू।
2: सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी प्रेजेंट टू यू अ सॉन्ग फ्रॉम डीजे बॉडनेक्स।
1: वाओ, ओके।

0: शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले
1: क्या बात है, क्या
2: ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. जी मुझे एक सवाल आया था समझ के लिए, आप फिर से पूछना चाहोगे?
1: पूछ के बता देंगे है कि नहीं, पर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं एक और बार सबको एक इनवाइट आपकी तरफ से फॉर अंताक्षरी.
0: बिल्कुल, आप सभी को निमंत्रण है, आप आइए हमारे साथ जुड़िए. दिनांक 23 मई शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक अंताक्षरी में, द गोल्डन एरा अंताक्षरी, जहाँ पे खूब सारे गाने होंगे, खूब सारा मजा होगा और खूब सारे गेम्स होंगे. और ये स्पेशली दिस इनवाइट गोज फॉर आवर पेरेंट्स, इफ दे कैन कम जॉइन अस, इट बी एन वंडरफुल टाइम. थैंक यू.
2: वेल सेड.
1: आल्सो प्राइजेस भी है, बेस्ट ड्रेस्ड कैप.
0: एब्सोल्युटली बेस्ट, यस प्राइजेस.
2: So what are the prizes? Do you want to talk about it again?
1: So, jitna hume pata hai, best dressed male, female ke liye prizes hai. Baki to Krish ji aur hum dekh lenge, aur kuch prizes dena hai ya nahi.
2: Ji haan, kuch hoga to humne, hum aise hi wahan pe us din hum prize announce kar denge. Baad mein Anshu ji se.

0: पड़ेगी वो अलग बात है. चलो तो आई थिंक जैसे समर जी ने कहा है कि ये एक एक्साइटिंग पॉइंट है, बट एक सवाल तो हमने हमने इतने दुनिया भर के सवाल किया है, पर एक सवाल हमने पूछना बंद भूल ही गए, क्या ये पब्लिक के लिए ओपन है?
1: हाँ जी बिल्कुल, ये पब्लिक के लिए ओपन है, ये किसी एक
0: इट्स नॉट कि सिर्फ ग्रुप में आना नहीं है, आप आकर देख भी सकते हो,
1: आप आके देख भी सकते हैं, आप आके वहां पे सिर्फ उस वातावरण और जो उस
0: एनवायरनमेंट
1: आपने मुंह पे वो वर्ड फिक्स हो गया.
0: तो
1: यू कैन बी पार्ट ऑफ द इवेंट, यू डोंट हैव टू बी जस्ट बीइंग प्लेइंग द गेम्स, यू कैन जस्ट वॉच एंड एंजॉय द म्यूजिक एंड एंजॉय द वाइब एज वेल.
0: आई थिंक इट्स सच अ ब्रिलियंट आइडिया, यू कम विद योर फैमिलीज देयर. अगर आप अपना ग्रुप लेकर आ सकते हैं, जैसे जो लोग आज हमारे साथ है, गिव अस अ पर्सनल मैसेज, आपका ग्रुप फ्री में रजिस्टर हो जाएगा. इसके साथ साथ अगर आपके घर पे ओवर 50s है, आपके माता पिता घर पे आपको गाना गा गा कर सुना सुना कर पका रहे हैं, भाई उनको वहां आकर लेकर आना, सबके सामने गाएंगे. और जिसने भी पूछा था कि इज डीजे बॉटनिक सिंगल ऑन, आप उस दिन आकर यह डायरेक्ट पूछ लेना. तो गाइस दैट्स आवर शो फॉर टुडे. थैंक यू जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे, ऑनलाइन जुड़े थे. जीबी जी आप वो माइक पकड़ लीजिए. और थैंक यू सो मच जीबी. अगर कोई भी और मैसेज हो, इफ यू कैन क्विकली गो ओवर दैट बिफोर वी साइन ऑफ.
2: काफी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं. प्रदीप करण जी, कैसे हैं आप? ऑल द वे फ्रॉम फिजी में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, कहाँ हो प्रदीप जी, जरा बताइए. राधा पिल्लई जी, आपका भी स्वागत करना चाहते हैं. धर्मेंद्र कुमार जी, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी रेडियो के जे लोकल पर स्वागत करना चाहते हैं. अंशु जी फ्रॉम ISCC इज सेइंग डू कम एंड सपोर्ट.
0: डेफिनेटली गाइस, दैट्स इट, हमारा फ्राइडे का जो शो है इसे हम यहीं पर अलविदा कहते हैं. हम आपसे मिलेंगे संडे को, याद के संडे को. वैसे तो हमारा जो हॉरर स्टोरी है, वी वर गोना डू इट टुडे, बट वी डू इट ऑन संडे. इसके साथ साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे. तब तक अपना ख्याल रखिए. आखिरी गीत में हम आप सभी को याद करते हैं, खास तौर पर से ये गीत हम डेडिकेट करना चाहेंगे आरजे जीबी को. और दिस इज आरजे कृष साइनिंग ऑफ विद अ वेरी ब्यूटीफुल विद अ वेरी गॉर्जियस
2: आरजे जीबी. बाय.